को मन मारसी जे सतगुर भेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा पायन बिच सख्त शिव भासा सख्ति किने न पायो फिर जन्म बिन बेनासा गुरसेवीए संत पाइये जप सास गिरासा सिमरत सास सोध देख उत्तम हर दासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा श्लोक महला तीजा हो बां पंडित जोत के वेद पढ़ा मुख जार नव खंड मध्य पूजिए अपने चज विचारा मत सच्चा अखर भुल जाए चौंके पिटे न कोए झूठे चौंके नानका सच्चा एको सोए महला तीजा आप पाए करे आप आपे नदर करे आपे दे बड़ियाइया को नानक सच्चा सोए पौड़ी कटंक काल एक है होर कटंक ना सूजे अफर्यों जग में भरतदा पापी स्यों लूजे गुरसबदी हर भेदीए हर जप हर बूझे सो हर सरनाई छुटिए जो मन स्यों जूझे मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे श्लोक महला पहला हुक्म रजाई साखते दरगे सच कबूल साहेब लेखा मंग से दुनिया देखना भूला दिल दिल दरबानी जो करे दरवेसी दल दिल रास इसक मोहब्बत नानका लेखा कर दे पास महला पहला अलगो जोए मत उकड़ो सारंग पान सुभाए हीरे हीरा बेदया नानक कंठ सुभाए पौड़ी मनमुख काल ब्याप

सर्वे जोई लगाचमे दुख दुख कनेरो आथा कालर लादस सार लांगणो लाभ न पूंजी साथ महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखटो दर्ब पार नानक बखर निर्मलो तन साओ बपारा महला पहला पूर्व प्रीत प्राण लै मोटो ठाकर मान माथे उबे जम मारसे नानक मिलन नाम पौड़ी रे आपे पिंड सबारियन बिच नवनिध नाम एक आपे परम पलायन तिन्हे पल काम इकनी गुरमुख बूझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मनिया हरि उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम सलोक महला पहला भोल तन पह मन वसे हिके पादर ढीडा अत डरपण दुख कणो तीने थाव परीडा महला पहला मादल वेदन बेबाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो वरना कोए महला पहला सागर गुणी अथाओ के नहथाला देखिए बड़ा बेपरवाओ सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बिदुख नानक सच्चे नाम बिन।

गदारबा नगरी सुख घटाऊ टूएं बेस पताणु कर कणे पौड़े अकल कला न पाइये प्रबल खलेखंग खट दर्शन परमते फिरे ना मिलिये पेखंग वर्त करे चंद्रायना से किते न लेखंग वेद पढ़े सपूर्णा तत्सार न पेखंगा तिलक कडे स्नान करे अंतर कालेखंग पेखी प्रभु न लभे बिन सच्ची सेखंगा पुला मार्ग सो पवे जिस तुर मस्तक लेखंग तिन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखंग दखणे महला पांजवा सो निवाहु गढ़ सो जो चलाहु न थीए कार कुड़ा भी छड संभल सच तनी महला पांजवा हां बस माणी चोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थिया आप नानक मस्तक लिखिया महला पांजवा सुख सहावै नाम चो आठ पैर गुण गाओ नानक दर गय मनिए मिले न था वै थाओ पौड़ी बार पेख ना पाइये प्रभ अंतर जामी एक सर ज्यो बारी सब फिरे ने कामे मन रत्ता को टंब स्यो नित गर्भे फिर फेरामे फिरे गुमानी जग में क्या गर्भे दामे चलदया नाल ना चले खिन जाए बेलामे बिचर दे फिरे संसार में हर जी महो कामे कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिसकी कामे दखणे महला पांजवा मुखो लाए हम्ब मरन पछाण दो कोय नानक तिना खाक जिना जकीना हिक स्यो महला पांजवा जान संदो मज पछाणु को हेकड़ो तै तन पड़दा नाए नानक जय गुर भेटिया महला पांजवा मतड़ी काडो आ पाव तबंदो पीवसा मुँह तन प्रेम था पत्सन को सच्चा तनी पौड़ी निरपौ नाम विसारिया नाल माया रचा आवे जाए पभाइये बौजोनी नचा बचन करे तैं खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कुड़िहार कूड़ी सब कच्चा खू कूड़ी सब खच्चा बैर करे निर्बैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पात साहे बेख तुर कर मचा जमदूती है हीरिया दुख ही मैं पच्चा हो आत बापस धर्म का नानक दर सच्चा डखणे महला पांजवा प्रभाते प्रभ नाम जा

ढह गए परवार सकल स्यो राम न जपो भागे राम। वेद प्राण पड़े का क्या गुण खर चंदन रस पा जस पारा। राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतर सपारा। जी बधो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत पाए। आपस को मनवर कर थापो का को कहो कसाए। मन के अंधे आप न बूझो काहे बजावो पहाई। माया कारण विद्या बेचो जन्म व्यर्था जाए। नारद वचन भी

न तजे विकार, जे कर बन संसर किया ते पूरे संसारा। सार सुख पाइये रामा, रंग रबो आत्मे राम होए राम, रंग रबो आत्मे रामा राम। जटा भस्म लेपन किया कहां गुफा में भास, मन जीते जग जीतिया जाते बिखिया ते हुए उदास। अंजन देह सबे कोई चुक चाहन महे बिढान, ज्ञान अंजन जय पाया ते लोयन पर भाना। कहे कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए, अंतर्गत हर पेटिया अब मेरा मन कत हो न जाए। रिद सिद जाको फुरी तब काहूं स्यों क्या काज, तेरे कहने की गत क्या कहूं मैं बोलत ही बड़ लाजा। राम जे पाया राम दे पवे न बारे भार, राव झूठा जग ढहके कना दिन दोए बर्तन की आस। आ राम उदक न जन पिया तेह बोर न पही प्यास। गुर प्रसाद जे बुझिया आसा ते पिया निरास, सब सच नदरी आया जो आत्म पिया उदास। राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार, कौ कबीर कंचन पिया भरम गया समुद्रे पारा। उदक समुद्र सलर की साखिया नदी तरंग तरंग समावैगो समावैगे, सुने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावैगे। बहर हम काहे आवै घे आवन जाना हुक्म तिसे का, हुक्मे बुज समावै घे राव। जब चुके पंच तात की रचना ऐसे भरम चकावै घे, दर्शन छूट पहे समदर्शे एको नाम ते आवै घे। जित हम लाए तित ही लागे तैसे कर्म कमावै घे, हर जी कृपा करे जो अपनी तो गुर के शब्द समावै घे। जीवत मरो मरो पुन जीवो पुनरप जन्म न होए, कौ कबीर जो नाम समाने सुन रहा लिव सोए। जो तुम हो को दूर करता हो तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक होए रे हो सगल मह अब कैसे परम हबो। राम मोह को तार कहाँ ले जही है, सोदो मुक्त कहाँ देव कैसे, कर प्रसाद मोहे पाई है। रहाओ तारन तरन तबे लग कहिए, जब लग तत न जानिया अब तो भिमल पहे कट ही मैं, कहे कबीर मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण, काहे की जत मैं काहे की जत है मन पावन। जब जम आए के सते पटक पकरे हर को का नाम छावना। रहाओ काल काल खसम का कीना एव परपंच बधावना, कहे कबीर ते अंते मुक्ते जिन हिरदे राम रसायना। देवी गा देही गावा जियो धर्म तो बसे पंच कर साना, नैनू नटको सरवन सरपत इंद्री कहा न माना। बाबा अब ना बसो एक एह गाओ, करी करी का लेखा मांगे का इत चेतू नहाओ। राम धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी, पंच किसान बा भाग गए लै बाद्यो ज्यो दरबारी। कहे कबीर सुनो रे संतो केती केत ही करो नभेरा, अब की बार बक्सल बंदे को बहर न पव जल फेरा। राग मारू बाणी कबीर जियो के इक कार सतगुर प्रसाद, अनपो किने ना देखिया बैरा घड़ी है, बिन पह अनपो हुए बन हम बै, सौ दूर देखे ता पह पवे बैरा घड़ी है, हुक्मे बुझे ता निरपो हुए बन हम बै। हर पखंड ना कीजे बैरा घड़ी है, पखंड रता सब लोक बन हम बै, तृष्णा पास ना छोड़े बैरा घड़ी है, ममता जालिया पिंड बन हम बै। चिंता जाल तन जालिया बैराग घड़ी है, जे मन मृतक होए बण हम बै। सतगुर बिन बिराग ना हो वै बैराग घड़ी है, जे लोचे सब कोए बण हम बै। कर्म होए सतगुर मिले बैराग घड़ी है, सहजे पावे सोई बण हम बै। कहो कबीर एक बेनती बैराग घड़ी है, मोह को पवजल पार उतार बण हम बै। राजन को तुम्हारे आवे ऐसो पाओ विद को देखियो, ओहो गरीब मोहे पावे। राम हसी देख परम ते भूला श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध विद को पानो अमृत कर मैं मानिया।
ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕਰ ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦੇ, ਜਾਤਨ ਕਾਹੂ ਕੇ ਮਾਨੇ, ਸਲੋਕ ਕਬੀਰਾ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸਾਨੇ ਕਹਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ।

0: कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देव जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद चार मुक्त चारे सिद्ध मिलके दुल है प्रभ की शरण भरियो मुक्त पियो चौहू जग जान्यो जस कीर्त माथे छतर धरियो राजा राम जपत को ना तरियो गुरपदेश साद की संगत भगत भगत ता को नाम परियो राव शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डरियो निरपा पहे राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हरियो अम्बरीक को दियो अबे पाद पाद राज पिभीखन अदक करियो नौनित ठाकर दई सुधामे त्रु अटल हजू ने टरियो भगत हित मारियो हर नाक्ष नरसिंह रूप होए दे तरियो नामा कहे भगत बस के सब अजू बल के द्वार खरो मारू कबीर जियो दीन बसारियो दे दीवाने दीन बसारियो रे पेट भरियो पशुओं से सोयो मनुख जनमन है हारियो रहाओ सा संगत कबू ने कहने रचियो तंदे झूठ स्वान सुकर बस जीवे भटकत चालियो उठा आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लग मात मनसा बाचा कर मना मैं देखे दोजक जाता कामी क्रोधी चातरी बाजी गर्भे काम निंदा करते जन्म सरानो कभू न बिस्मरियो राम कहे कबीर चेते नहीं मूर्ख मुग्ध गवार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार वाहिगुरु जी का
1: सतगुरु प्रसाद तन चंद संद सत भेदिया नाद सत पूरे सूर सत खूड़ सा दतकिया अबल बल तोड़िया चल चल थापिया कड़कड़िया तहा प्यो पिया मन याद कोगा गुण याद बखानिया तेरी दूदा जिस समाने रहा अर्ध को अर्दया सरद को सरदया सलल को सलल सम्मान आया बज बजते जय जो कौश रमया ब्रह्म निर्वाण लिव लीन पाया कबीर मारू राम सिमर पछताहेगा मन पापी जीरा लोभ करत है आज काल उठ जाहेगा रहा लालच लागे जन्म गुआया माया भरम भुलाएगा धन जो बनका गर्व न पीजे कागज जो गल जाएगा जो जम आए केस गै पटके ता निरकृष्ण बसाएगा राय सिमरन भजन दया नेकी नी तुम को चोटा खाएगा धर्म राय जब लेखा मांग क्या मुख लै के जाएगा कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाहेगा राग मारू बाणी रविदास जी की ओंकार सतगुरु प्रसाद ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब नवाज गुसाइया मेरा माथे छतर तरे रहा जा कीशो जगत को लागे ता पर तु ही टरे नीचो ऊच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे

ब्रह्मा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तू सुन किरत करम पूर्व कुमाया सिर सिर सुख सहमा देह सो तू भला हर चरचना तेरी क्या गत मेरी हर बिन पड़ी न जीवा प्रे बाज दुहेली कोय न बेली गुरमुख अमृत पीवा रचना रात्रे निरंकारी प्राव मान कर्म सुकर्मा कहो नानक नानक पंथ निहाले सातन तो सुन आत्म रामा बाबी हाँ प्रे बोले कोकल बानिया सातन सब रस बो चोले अंक समाणिया हरे अंक समानी जा प्रभाणी सा सुहागन नारे नाव कर नाथ महर कर जा उचा निज घर वास मुरारे सब तेरी तू मेरा प्रीतम निस्बासर रंग रावे नानक प्रभु रवै चबीह चवै बबीह कोकल शब्द सुहावे तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम अपने मन तन रव त्रवन घड़ी न विसर क्यों घड़ी विसारी हो बलहारी हो जीवा गुण गाए ना कोई मेरा हो किस कीरा हर गुण रह न जाए उठ गई हर चरण निवास पवे पवित्र शरीरा नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावे गुर शब्दी मन धीरा बरसे अमृत बातार बूंद सुहावने साजन मिले सुहाए सह सुहाए हर सुप्रीत बने हरे मंदिर आवे जा प्रभावे तन उबे गुण सारी घर घर कंत रवे सुहागण हों क्यों कंत विसारे उनवे घन साए बरस सुहाए मन तन प्रेम सुखावे नानक बरसे अमृत बाणी कर कृपा कर आवे चेत बसंत भला भवर सुहावड़े बन फूले मंज बाले मैं पिर कर सबाहड़े

हम सतगुरु भिटो कुमाय हम पाथर गुरु नाभ विख भव जल तरिये राम गुरुदेव शब सुभाए मैं मूड़ मुग निस्तरिये राम हम मूड़ मुगद कुछ मित नाही भाई तू अगम वट जानिया तू आप दयाल दया दयाल कर तू आप दयाल दया कर मिल हम निर्गुणी नी मानिया नेक जन्म पाप कर कर भरमे हुन तो शरणागत आए दया करो रख लेव हर जियो हम लागे सतगुरु।

सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा राखो मान देह प्रीतम साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद अमोदर निर्मल कथा ज्ञान नानको हरे कै रंग रागो चरण कौ सलद्यान के दार महला भंजवा हर के दर्शन को मन जाओ कर कृपा संसंग मिला सतसंग मिला वो तुम देवो अपनो नाव रहा करो सेवा सतपुरख प्यारे जस सुनिए तत महन मन रसाओ वारी फेरी सदा कुमाई कौन अनूप तेरो उठाओ सर्व व्रत पालय सगल पर संभाल सगले तेरी छाओ नानकी प्रभु रुख विधाते घट कर तुझे समा दिखाओ।

परम पोम ओ कट्यो गुरु बचने अपना दर्श दिखाओ सब की रेन होए मन मेरा उत जाओ।

उदर सागर के खात शरण सम्राथ गथ गोचर हर सिमरत दुख लाथ नानक दीन धुर जन बांचत मिले लिखत धुर माथ के दारा महला पंजवा घर पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद बिसरत नाहे मन ते हरी आवे प्रीत महा प्रबली प्रबल भई

हरे चन बोध उदरत लैपो मुआरे गर्व कुंट में जिने तारियो नहीं बिखे बण में होरे हर सकत सरन न समर्थ नानक आन नहीं निहोरे के दारा महला पंजवा रसना राम राम बखाने गुण गोपाल विचारे दिन रहने पय कलम लहान रहा त्याग चलना सकल बन संकत है।

करे भिख संचय नित डरता फिरे है निकटे यार भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोहि माया नेड़े नेड़े सब को कह गुरमुख भेद विरला को लह रहाओ निकट ना देखे पार गृह जाए दर्भ हिरे मिथया कर खाए पैठ गौरी हर संग ना जानिया बाज गुरु है भरम भुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मुहे मुठा है मूड़ अंतर वस्तर संतर जाए बाज गुरु है परम भुलाए जिस मस्तक कर्म लिखिया लीलाट सत गुर सेवे खुले कपाट अंतर बाहर निकटे सोए जन नानक आवे ना जावे कोई भैरु महला पैवा जिसनू राखै तिस कौन मारे सब तुझ ही अंतर सगल संसारे कोट उपाव चितवत है प्राणी सो होवै जे करह चोज विडानी राखो राखो कृपा तार तेरी शरण तेरे दरबार आओ जिन सेव्या निरपौ सुखदाता तिन पौ दूर किया एक प्राता जो तू करे सोई फुन होए मारे ना रखे दूजा कोए क्या तू सोचे मानस बाण अंतर जामी पुरख सुजान एक टेक एक आधार सब कुछ जाने सृजनहार जैसे ऊपर नदर करे करतार तेस जान के सब

पंडित, बिन अमरै कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहाँ मन ठहराना, ना बिना सब जग बहुराना, बिन बैरा कहाँ बैरागी, बिन हौ त्याग कहाँ को त्यागे, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, ना बिना सद सद ही चूरे, बिन गुरु दिखिया कैसे ज्ञान, बिन पीकै कहो कैसो ध्यान, बिन कै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दाद का विचार, भैरव महला पहिवा। हमै रोग मनुख कहो दीना, काम रोग बैगल बस लीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु।

कुटुंब हमारा निज घर वासी, हम सुख पाया तां सभे सुहेले, गुर पूरै पिता संग मेले रहाओ। मंदर मेरे सब ते उचे, देश मेरे बेअंत पुछे, राज हमारा सद ही ने चल, माल हमारा अकूट अवेचल, शोभा मेरी सब जुगे अंतर, बाज हमारी थान तनंतर, कीर्त हमरी कर कर होए, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता भूत रलकिनी सांझ, कहो नानक जाओ पिता पति ने, पिता पूते के रंग लीने, भैरू महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हमें अपराधी तुम बख्साते, जिस पापी को मिले ना ढोई, शरण आवे तां निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु त्याए नहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मान तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़ता ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया, तिस भाणा सूके कष्ट हरिया, तिस भाणा ता जल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए, राम खोर निर्गुण कहो तूठा, मन तन शीतल मन अमृत मूठा, पार ब्रह्म गुर पए दयाला, नानक दास देख पए निहाला, भैरो महला पंजवा, सतगुर मेरा बे मोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सिका दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ, सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल, सतगुर मेरा मार जीवालै, सतगुर मेरे की वड्याई, प्रगट पई है सबनी ताई, सतगुर मेरा तान तान, सतगुर मेरा घर दीवान, सतगुर कै हों सद बल अंजाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, जिन गुर सेविया तिस भओ ना व्यापै, जिन गुर सेविया तिस दुख ना संतापै, नानक सोदे सिमरत भेद, आर ब्रह्म गुर नाही भेद, भैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया, नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अट सट मजनाया, तीर्थ अमरा हर को नाम, गुर बंदेसिया तत ज्ञान रहाओ, नाम लैत दुख दूर पुराना, नाम लैत आत्मूण सो ज्ञाना, नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छूटे जंजारा, नाम लैत जम नेड़ना आवै, नाम लैत दरगै सुख पावै, नाम लैत प्रभ कहे सबास, नाम हमारी साची रास, गुरु उपदेश कहे ओए सार, हर कीरत मन नाम आधार, नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोके पतियार, भैरो महला पंजवा,

नाम हमारे भोजन पाओ, नाम हमारे मन का सुभाओ, नाम ना विचरे संत प्रसाद, नाम लै तन हद पूरे नाद, प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बन आई, धनवंते सही प्रधान।

पूरा सुख सागर तेरी टेक नहीं पौ कोए अंतर जामी साचा सोए तेरी टेक तेरा मन तान इहां उहां तू दीवान तेरी टेक तेरा परवासा सगल त्यावे प्रभ गुण तासा जप जप आनंद करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुण तासा भैरू महला पंजवा प्रथमे छोड़ी पराई निंदा उतर गई सब मन की चिंदा लोभ मोह सब की नो दूर परम वैष्णो प्रापे कहजूर ऐसो त्यागी बिरला कोए हर हर नाम जपे जन सोए रहाओ अंबुद का छोड़िया संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम त्याए।

0: कर कृपा पुरख गुणतास। कहो नानक तुमरी सरनाई, ज्यों पावै त्यों रखो गुसाई। भैरो महला पंजवा, गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ, गुरमुख जपियो हर का नाओ। बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा। कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्ब सुख पाए रहाओ। रोग दोख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे। गुर पीड़त मन पया आनंद, सर्ब निदान नाम भगवंत। जन्म मरण की मिटी जम त्रास, साध संगत उद कमल बिगास। गुण गावत निचल विश्राम, पूरन होए सगले काम। दुर्लभ दे आई प्रमाण, सफल होई जप हर हर नाम। कहो नानक प्रभ कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरि। भैरो महला पंजवा,
1: सब ते उच्चा जाका नाउ, सदा सदा ताके गुण गाओ। जिस सिमरत सगला दुख जाई, सर्व सुख सह मन आई। सिमरमना तू साचा सोए, हलत पलत तुमरी गत हुई रहाओ। पुरख निरंजन सृजनहार, जी जंत देवै आहार। कोट खते किन बख्शन हार, भगत पाए सदा निस्तार। साचा तन साची वडियाई, गुरपुरे ते निश्चल मत पाई। कर कृपा जिस राखण हारा, ताका सगल मिटै अंधियारा। पार ब्रह्म स्यों लागो त्यान, पार ब्रह्म स्यों लागो त्यान। पूरन पूर रहियो निर्वाण, ब्रह्म पाओ मेट मिले गोपाल। नानको गुर भय दयाल, भैरो महला पंजवा। जे सिमरत मन होए प्रगास, मिटै कले सुख सहज निवास। तिसह प्राप्त जिस प्राप दे, पूरे गुर की पाए सेवा। सर्व सुखा प्रभ तेरो नाउ, आठ पैर मेरे मन गाउ रहाउ। जो इच्छा सोई फल पाए, हर का नाम मन वसाए। आवन जान रहे हर ध्याए, भगत पाए प्रभ की लिवलाए। बिन से काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार। प्रभ की टेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात। करण करा मनहार स्वामी, सागल कटां के अंतर जामी। कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरण आए। पैराओ महला पंजवा, लाज मरै जो नाम नाम लेवै। नाम बिहोन सुखी क्यों सोवै, हर सिमरन छाड़ परम गत चाहै। मूल बिना साखा कत आहै, गुरु गोबिंद मेरे मन त्याई। जन्म जन्म की मैल उतारै, बंधन काट हर संग मिलाई रहाओ। तीर्थ नाए कहाँ सोच सैल, मन को व्यापै हमें मैल। कोट जा कर्म बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरता अंकूल। बिन खाए बुझे नहीं भूख, रोग जाए ता उतरै दुख। काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया। तन तन ताद तन हर नाऊ, आठ पैर कीर्तन गुण गाओ। तन हर भगत तन करणै हार, शरण नानक प्रभु पुरख अपार। भैरो महला पंजवा, गुरसु प्रसन्न होए पाओ गए। नाम निरंजन मन में लय, दीन दयाल सदा कृपाल। बिन सगाए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद कणे। सात संग मिटे पै परम अमृत, हर हर रसन पनी रहाओ। चरण कमल स्यों लागो हेत, खन में बिन स्यो महापरेत। वाट पहर हर हर जाप जाप, रख नार गोबिंद गुर आप। अपनी सेवक सदा प्रत पारै, भगत जना के सास निहारै। मानस की को केतक बात, जमते राखै दे कर हाथ। निर्मल सुभा निर्मल रीत, पार ब्रह्म आया मन चीत। कर कृपा गुरु दीनो दान, नानक पाया नाम निदान। पैरव महला पंजवा, करण कारण समर्थ गुर मेरा। जी प्राण सुखदाता नेरा, पै पंजने अविनाशी राए। दर्शन देखे सब दुख जाए, ਜਦ ਕਦ ਵੇਖੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ, ਰਹਾਉ ਪੂਰਨ ਕਾਮਿਲੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਫਲ ਦਾਤਾ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ, ਕਰ ਗੈ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਤ ਦਿਓ ਨਿਵਾਸ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਸੋਗ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਨ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਚਰਜ ਬਾਣੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਮਨ ਭਾਣੀ, ਜਲ ਤਲ ਮਹੀਲ ਰਵਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ, ਪੈਰਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਮਨ ਤਨ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚਰਨੇ, ਸਰਵ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ, ਆਟ ਪੈਰ ਗਾਵਤ ਭਗਵੰਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨੋ ਪੂਰਾ ਮੰਤ, ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰੂ, ਤਿਸਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਰਹਾਉ, ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਸਿਮਰਾ ਏਕ, ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜਿਸ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ, ਸੋ ਕੁਲਵੰਤਾ ਜੇ ਸਿਮਰੈ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਜੇ ਆਪਛਾਨੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਵਿਤੂਟੇ ਬੰਧਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਿਦਮਾਹੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ, ਸੋ ਜਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਆਪ ਵਿਤ ਪਾਵਨ ਸਭ ਕੀਨੇ, ਰਾਮ ਰਸਾਇ ਰਸਨਾ ਚੀਨੇ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਕਿਛ ਬਿਗਨਣ ਲਾਗੈ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਜਮ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੈ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਸਭ ਦੁਖੈ ਨਾਸ਼, ਨਾਮ ਜਪਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਨਿਰਬਿਘਨ ਭਗਤ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ, ਰਸਕ ਰਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਰਹਾਉ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਛ ਚਾਖ ਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦੈ ਦਿਓ ਨਾ ਪੋ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੋਹ ਮਾਨ ਨਾ ਵਧੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਜੋਨ ਨਾ ਰੁਦੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੇਲਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁ ਮਾਹੇ ਅਕੇਲਾ, ਜਾਤ ਅਜਾਤ ਜਪੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਜੋ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਦੇਹੋ ਚੇਤਾਰ, ਪੈਰਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪੇ ਸਾਸ ਤੇ ਆਪੇ ਵੇਦ, ਆਪੇ ਘਾਟ ਕਟ ਜਾਣੈ ਭੇਦ,

चरण कमल गुरमुख आराधो दुश्मन दुख न आवै नेरे रहाउ। आपे वर्णतन त्रय पवन सार जाकै सूत प्रोया संसार। आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्वाणी आपे भोगी। जात कत पेखो ता तत सोए तिस बिन दूजा नाही कोए। सागर तरिय नाम कै रंग गुण गावै नानक साध संग। मोकत भोगत जुगत वस जा कै ऊना नाही किस जन ता कै। कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न नानक दास सेई जन धन। पैरो महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्तित पै बिनसी सब चिंद। पै ब्रह्म बिनस गए खिन माई पार ब्रह्म वसिया मन आई। राम राम संत सदा सहाय कर बाहर नाले परमेश्वर। रब रहया पूर्ण सब ठाई रहाउ। तन माल जोबन जुगत गोपाल जी प्राण सुख प्रत पाल। अपने दास को दे राखै हाथ निमक न छोड़ै साध ही साथ। हरसा प्रीतम अबर न कोए सार संभाले साचा सोए। मात पिता सुत बंध न रायन आज जुगाद भगत गुण गायन। तिस की धार प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं होर। नानक

बलिहार साधु तूर पुनीत करी मन के बेकार मिटे प्रभु सिमरत जन्म जन्म की मैल हरी रहाओ। जाके गृह में सगल निदान जाकी सेवा पाइये मान सगल मनोरथ पूर्ण हार जी प्राण भगत ने आधार काट काट अंतर सगल पर गास जप जप जीव भगत गुण तास। जाकी सेवन बिरथी जाई मंतन अंतर एक ते आए गुरु उपदेश दया संतोख नाम निदान नरमले थोक कर कृपा लीजै लड़ लाए चरण कमल नानक नित ते आए पैरव महला पंजवा।

क्या होई। किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझे तन आप भुलाया, पुत्र प्रहलाद सो बाद रचाया, अंधा ना बूझे काल नेड़े आया। प्रहलाद कोठे विच राखिया बार दिया ताला, निरपो बालक मूल ना डरई मेरे अंतर गुर गोपाला। कीता होवै श्री की करे अनहुंदा ना उतराया, जो तुर लिखिया सो आए पहुता, जन सों वाद रचाया। पिता प्रहलाद सों गुरजो उठाई, कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई।

कोट गुणा तेरे गणे न जाए। कोट ज्ञानी कथ ज्ञान, कोट ध्यानी तरत ध्यान, कोट तपीसर ताप ही करते, कोट मुनीसर मोन में रहते। अवगत नाथ गोचर स्वामी, पूर रहया कट अंतर जामी, जात का देखो तेरा वासा, नानको गुर कियो परगासा, पैरो महला पंजवा। सतगुरु मोको की नो दान, मूल रतन हर दिनो नाम, सहज विनोद चोज अनंता, नानको प्रभ मिलो अचिंता, कौ नान कीरत हर साची, बहर बहरु तिस संग मन राची राव।

राना राम राजा नौ निध मेरा संपै हेत कलत धन तेरा रहा वावत संग न जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी।

खंडो अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी सारण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले। राखो राखन हार दयाला